0: हेलो हेलो 1 2 3 चेक।
1: तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ज।
2: सुर में गाना सीखे पाधानी सा ऐप के साथ AI powered personal music feature from सारेगामा।

0: आरोपी की गाड़ी चला रहा था। भट्टी भट्टी बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।